गुरिकी गुरिकी गुरिकी गुरिकी गुरिकी गुरिकी गुरिकी गुरिकी गुरिकी।